0: And because you are the professional, you would obviously in a better position to know such things. And thank you for doing that. Achhi baat hai. Aur at the same time, kabhi ye bhi apne like do you come across this as well? Ki customer kuch mang raha hai ki building hume yahan se banana hai, and then you have to explain to them ki nahi ye nahi ho sakta because of the requirements from the council or something.
1: तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जो मेरा आर्किटेक्ट है ना उनके साथ ही मीटिंग करवा देते हैं और पहले आर्किटेक्ट को बता देते हैं कि भाई ऐसा सा सिचुएशन है, तुम सारा गाइडलाइन सब देख लो, क्योंकि यहाँ पे दो गाइडलाइन होता है, एक तो डेवलपर जो लैंड का गाइडलाइन होता है, एक होता है जो काउंसिल का गाइडलाइन होता है, तो दोनों को कंबाइंड करके ना तब इसका आउटकम निकलता है. तो वो हम लोग पहले ही बात करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, और कोशिश हम लोग यही करते हैं कि जब प्लान प्रपोज करें ना काउंसिल को तो उसको पुशबैक रिजेक्ट ना करें, क्योंकि अगर आप प्लान को प्रेजेंट करते हैं और प्लान को पुशबैक मिलता है तो वो टाइम डिले होते रहता है ना, और टाइम डिले और हम लोग जैसा आपको पता है 18 वीक्स में हम लोग घर बना के देते हैं फाउंडेशन से, जो कि क्राइसिस में बहुत कम बिल्डिंग कंपनी है जो 18 वीक में घर बना के दे देता है. हम लोग स्टार्ट टू फिनिश कर देते हैं 18 वीक्स में फाउंडेशन से, तो वो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग वो सब चीज़ करके और उसको सामने प्रेजेंट करें, सो दैट कि काउंसिल, कभी रेयरली ऐसा हुआ है कि हम लोग को भी समझ में नहीं आया और हम लोग भी पुशबैक मिला है, हुआ है ऐसा. ऐसा नहीं कि हम लोग भी परफेक्ट हैं, वैसा नहीं है. वी ऑल्सो गेट इन अ सिचुएशन कि ऐसा हुआ है हम लोग के साथ कि नोइंगली अननोइंगली हम लोग भी ऐसा सिचुएशन में पड़े हैं एक दो, बट 98% 99% हम लोग थ्रू हो जाते हैं टाइमलाइन के हिसाब से.
0: जी हाँ, और एक चीज़ वही होती है ना लाइफ में, चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, एक चीज़ जो हमें सीखना चाहिए और सीखते रहना चाहिए. एंड यू हैव लाइक सेमिनार्स वगैरह होते होंगे टू एजुकेट योरसेल्फ सो दैट वी नो, और फिर लेजिस्लेशन भी चेंज होते रहता है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू कीप अप टू इट. वैसे तो जैसे मैंने शुरू में बोल दिया था कि एक तो जनरेशन होम इज़ अ ब्रांड, जैसे आपने बोला है कि यू टेक नो प्राइड 18 वीक्स में डिलीवर करना, फिर आपका दूसरा जो नो जो लोगो या आपका जो स्टेटमेंट होता है फिक्स प्राइस, तो हमने काफ़ी बार सुना है, सो वी नो दैट. और द सेम टाइम हमने ये भी मेंशन किया था कि व्हेन अगर हम विवेक से घर के विषय में बात करना शुरू कर देंगे तो फिर हमारे पास वक्त नहीं रहेगा. वी विल जस्ट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट. वी विल क्विकली जंप टू व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट टुडे, जो हमारा थीम रहेगा विच इज ट्रेडिंग. आप हमें एक्सप्लेन कीजिए, बिकॉज हमें मालूम है, हम गाड़ी में देखते हैं कि आपके पास अगर पुरानी गाड़ी है देन यू टेक यू टू द डीलर आपको एक सर्टेन अमाउंट देता है एंड देन यू वॉक अवे विद अ न्यू कार.
1: जी बिल्कुल सही सुना आपने. अभी लास्ट मंथ में ही हम लोग ये लॉन्च किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग का इंक्वायरीज आ रहा था हम लोग के पास कि अभी हम लोग घर को मूव करना चाहते हैं, घर वी आर इन अ सिचुएशन वी वांट टू सेल द हाउस. तो ये करके हम लोग पिछले 6 मंथ से रिसर्च कर रहे थे कि भाई इस चीज़ को कैसे लॉन्च किया जाए सो दैट को क्लाइंट को भी फायदा हो, कंपनी को भी फायदा हो, और एक स्ट्रेस फ्री ये जर्नी रहे लोगों का, क्योंकि घर बेचना यहाँ पे भी सबसे हाई, घर बेचना और घर चेंज करना नंबर 10 है यहाँ पे. आप जैसे जितना भी स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस का नंबर 10th लास्ट है यही है. मतलब ऐसा नहीं कि भाई बहुत छोटे छोटे स्ट्रेसेस है, बट ये सबसे एक्सट्रीम स्ट्रेस है कि घर को बेच के एक दूसरे घर में जाना. तो बहुत सारा इंक्वायरी होने के बाद हम लोग यही सोचे कि भाई इसको कैसे हम लोग ऐसे डिज़ाइन करें सो दैट कि लोगों को स्ट्रेस फ्री ये जर्नी हो जाए. तो बिल्कुल आपने सही बोला कि जब हम लोग कोई ट्रेडिंग कर, जैसे कोई गाड़ी ट्रेडिंग करते हैं ना, तो फिर उसके बदले आप नया गाड़ी लेते हैं, तो उसी तरह अगर आप अगर घर हम लोग को दे रहे हैं ना, तो आपको एक नया घर हम लोग बना के देंगे आपके अनुसार, जो आपको चाहिए जिस जगह पे चाहिए. ऐसा नहीं कि हम लोग बना बनाया घर दे रहे हैं नया, हम लोग उस लैंड को एक्वायर करेंगे और लैंड के ऊपर आपके लिए आपके अनुसार 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम 5 बेडरूम होम एंड इनकम कुछ भी बना के आपको हम देंगे. तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग घर को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपग्रेड इन द सेंस जिनका सिचुएशन आज से 5 साल पहले कुछ और था, अब सिचुएशन ऐसा हो गया कि फैमिली मेंबर बढ़ गया है, तो उसमें उनको रूम्स ज़्यादा चाहिए, तो 4 बेडरूम का घर चाहिए, तो उनके लिए वो जो 3 बेडरूम का घर है वो अब ज़रूरत नहीं है उनको, और वो सोच रहे हैं कि अगर बेचेंगे तो फिर अभी बहुत सारा प्रोसेस है बेचने का, ओपन होम करना होगा, लिस्ट करना होगा, और उस समय आपको घर खाली करके घर को पूरा सजाना पड़ेगा, जो स्टेजिंग जिसको बोलते हैं. तो वो सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना हम लोग सोचे कि नहीं, सारा स्ट्रेस हम लोग ले लेंगे और हम लोग उस घर को बेचेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस घर में आप रह सकते हैं जब तक आपका नया घर ना बन जाए. तो ऐसा नहीं कि आप जब एक बार कमिट कर देते हैं नया बनाने में, और जो जो आपका इक्विटी है वही इक्विटी आपका डिपॉजिट यूज़ हो जाएगा. तो जितना भी चीज़ है ये बैंकिंग प्रोसेस के हिसाब से, उसमें ये भी है कि आपको वैल्यूएशन होता है, सारा प्रोसेस जो होता है ना वो सारा प्रोसेसेस को टिक करना पड़ता है, एंड देन यू चूज वेयर यू वांट टू गो. और एक बार वहाँ पे जब वो पेपर साइन हो जाता है ना, देन यू वेट, वो घर जब बन जाता है तो

0: डे ऑफ द सेटलमेंट उसी दिन आपका वो घर जो पुराना घर है वो हम लोग ले लेंगे और आपका नया घर का जो भी अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो वो पे कीजिएगा और हम आपको पुराने घर का पैसा दे देंगे. तो मतलब ये जो एक क्या बोलते हैं एक हिंदी में जो बोल रहे हैं ना कि बहुत ही ये सिंपल लैंग्वेज में हम बता रहे हैं ऐसे इसका टेक्निकल लैंग्वेज सब बहुत सारा चीज़ है और टेक्निकल लैंग्वेज में है कि भाई आपका इसका हाउस का वैल्यूएशन करवाइएगा इसका जो काउंसिल का है सारा कुछ वो प्रोसेस जो होता है ना वो है मेरे पास इसका सारा गाइडलाइन है और किसी को भी ज़रूरत होगा तो फिर हैप्पी टू शेयर विद देम. और ये लॉन्च के बाद ना आप बिलीव नहीं कीजिएगा पूरे न्यूजीलैंड में ना हम लोग के पास एटलीस्ट 400 to 500 इंक्वायरीज आए हैं.
1: वाह 400 to 500 इज अ बिग नंबर.
0: हाँ सिर्फ क्राइस्टचर्च का 400 to 500 मतलब पूरे ऑल ओवर क्योंकि ये पूरे हर जगह लॉन्च हुआ है तो ऑकलैंड और हर जगह बहुत सारे जगह तो काफी इंक्वायरीज और काफी लोग एक्साइटेड भी हैं. थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज का स्टेप्स है और जिस जहाँ से हम लोग को फंडिंग लेना पड़ता है स्क्विरल है तो उनके थ्रू हम लोग को जाना पड़ता है और वो वैल्यूएशन जो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है वो सब देखना पड़ता है. उसके बाद कितना इक्विटी है घर के अंदर उसको सारा मेजरमेंट करके ना एनालाइज करके फिर हम लोग को एक फिगर ला के देना पड़ता है क्लाइंट्स लोग को. तो ऑब्वियसली हम लोग अगर कोई चीज़ ले रहे हैं और आपका स्ट्रेस भी ले रहे हैं और हम लोग खुद से वर्किंग कर रहे हैं तो दैट कम्स विथ अ मनी तो वो थोड़ा आपको कॉस्ट बियर करना पड़ेगा. सेम टू सेम जो मार्केट रेट है वो नहीं मिलेगा. हाँ आपको हम लोग वैल्यू निकालेंगे वैल्यू निकाल के आपको प्रपोज करेंगे कि ये वैल्यू हम देंगे आपको और आपको ये भी एक एक फ़ायदा होगा कि आप उस टाइम तक घर पर रह सकते हैं.
1: जी बिल्कुल there's a lot of kind of facts and figures involved रहता है obviously. और अभी हम अपने जो शुरू में बात किया था स्ट्रेस की तो सेल्स मैनेजर का स्ट्रेस लेवल कहाँ पे काउंट हो कहाँ पे
0: सेल्स मैनेजर का स्ट्रेस लेवल
1: जी बिकॉज 400 to 500 इंक्वायरीज और फिर उसके बाद में अभी जो आप ने हमें बताया आई एम श्योर जो लोग अभी सुनेंगे दे माइट हैव मोर क्वेश्चंस वो लोग भी जानना चाहेंगे कि क्या यू नो हाउ द प्रोसेस वर्क्स बिकॉज मुझे मालूम है काफ़ी लोगों का घर होता है ना ऑब्वियसली and then they want to build a new one because they've been in that home for certain years and jaise aapne bola many reasons hota hai and they want to upgrade aur abhi to sections bhi develop ho rahe hain and then hum social media mein bhi kafi hota hai and we look at these new flashy homes to hum bhi sochte hain chalo hum bhi kyun na naye ghar mein rahe aur and there are many reasons people choose to do that aur obviously that could be one option trading option sounds nice jaise gaadi ki baat hoti hai na to aapko bechna nahi padta hai trade me and then deal nahi karna padta with buyers and no bhi ek
0: हाँ और एक एक बात हम और ऐड करना चाहेंगे जैसे आज हम बात कर रहे हैं किसी से ना तो वो वैल्यू निकाले हम लोग है ना और वो जो लास्ट जो जब उनका सेल होता है ना वो तो उस पीरियड में 8 या 8-9 महीने लग जाता है 7 महीने लग जाता है 7 महीने में कौन सा मार्केट है लेकिन हम कमिटमेंट आज कर दिए हैं तो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स ना और वो फैक्टर हम लोग के लिए थोड़ा रिस्की भी है क्लाइंट के लिए भी रिस्की है. ये हो सकता है कि ये मार्केट थोड़ा बूम कर जाए तो थोड़ा लॉस ना हो जाए लेकिन क्लाइंट को ये मतलब ये समझ में आना ओनर को ना कि भाई चलो वो पैसा मेरे वो कमिटमेंट है वो मेरे पास पैसा आएगा ही और बैंक भी देखता है कि नहीं ये इनके पास वो पैसा आएगा तो बैंक को भी लेंडिंग में कंडीशनल लेंडिंग मिलता है उनको.
1: जी बिल्कुल आई मीन दैट समथिंग एक गैम्बल की तरह होता है ना यू ऑब्वियसली हैव टू टेक द रिस्क जिस तरह में फिक्स और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की बात होती है
0: बिल्कुल
1: व्हेन यू स्टार्ट फिक्सिंग दैट यू टेक अ रिस्क सभी में रिस्क होता है और हमें नहीं पता है कि क्या नेक्स्ट होने वाला है. आई मीन इंटरेस्ट जब हम सोचते हैं राइस होगा तो फॉल होने शुरू कर देते हैं एंड समटाइम्स मार्केट कैन क्रैश तो कुछ भी हो सकता है बट इट इज़ काइंड ऑफ अ गैम्बल. लेकिन एज मेंशन एलिया कि काफ़ी लोग हैं इनकी और भी जानकारी चाहेंगे सुनना चाहेंगे बिकॉज इट्स मोर लाइक अ न्यू पैकेज आपने जो अनाउंस किया है एंड मैंने जब सुना देन डेफिनेटली मैंने बोला चलो आप रेडियो पे आना बिकॉज आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड पीपल को अगर हु नोस किसको ये अच्छा लगे आइडिया एंड आई वांट देम टू टेक एडवांटेज इफ इट सूट्स देम बट ऑब्वियसली यू हैव टू मेक अ डिसीजन आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रोसेस. और यहाँ पे जब आप बोलते हो कि सेटलमेंट ही देन जब सेटलमेंट होगा दैट्स व्हेन दे मूव इन एंड मूव आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग होम तो उसी वक्त दैट्स व्हेन द मनी थिंग है. बस इससे पहले उनको लाइक टर्नकी की तरह चलता
0: है. हाँ ये बिल्कुल टर्नकी है ये टोटल टर्नकी है और ये जैसे टर्नकी में 10% डिपॉजिट होता है तो उनके घर का जो इक्विटी है ना वो इक्विटी ही हम लोग का डिपॉजिट होगा.
1: जी
0: तो मनी का ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं है तो इसीलिए हम लोग को ये देखना पड़ता है कि कितना इक्विटी है उस घर के अंदर. अगर किसी के पास 5%, 7%, 10% इक्विटी तो शायद मुश्किल होगा डील देना लेकिन किसी के पास ज्यादा इक्विटी है ना दैट विल बी मच मोर इजियर फॉर अस. तो उनका भी रिस्क कम होता है हम लोग का भी रिस्क कम होता है. तो जिस दिन वो सेटलमेंट अगर होगा जिस दिन होता है ना उस दिन बैंक ही थ्रू सारा पेपर